0: Street. 95.1 to MIA FM, the local one.
1: To MIA FM, what radio wants to be when it grows up.
0: Serving the Griffith community since 1988 on 95.1 FM and streaming on the iHeartRadio and Community Radio Plus apps. Welcome to the local one, to MIA FM.
2: Hey, got time to listen.
0: Now, another hour of Griffith's widest variety of music with Bobby's Punjabi Talk Show. Hashtag part of your community.
3: हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों, थोड़ा अपना बॉबी हाजिर हाँ, थोड़ा फेवर शो बॉबी पंजाबी टॉक शो लैके तो शो शुरू करते हैं अज आप इस बहुत ही प्यारे शब्द के नाल जिसन गाया दिलजीत दोसांझ ने, आर नानक पार नानक। फिर उस तो बाद एक दो होर आप शब्द चलावे तो उस तो बाद बुलावे थानू अपने मानयोग अंकल रवंत सिंह चौहान जी ना, जो कि अज थोड़े सामने फिर एक पंजाबी जो भी अज गीत पेश करनगे वो पहले दसणगे फिर करनगे। फिर तो शुरू कर दिया अच्छा शो उस बहुत ही प्यारे शब्द के नाल, आर नानक पार नानक।
4: समुंद शाह सुल्तान गिरहा से ती मालदन कीड़ी तुलना हो वही जे तिस मनो न मिसरे।